ने जंगल के अंदर से एक नल बनाया है। अगर वो पानी का मुहान ही बंद कर देंगे तो ये लोग कितने दिन भूखे प्यासे लड़ेंगे।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: आवरण फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो परमेश्वरला उपस्थितिला अभ्यास लसिगो जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अङ्क 58 रङ्गित स्वागत मुला गा वियोग तामाङ तिनी गा रङ्दा परमेश्वरले उपस्थितिलाई निरन्तर अभ्यास लबरी उत्साह लबरी सेमोला चुल अर्थ तिग हिन्बा युहन्न 16:13 तर थे सत्यला आत्मा फेख महेन्से सत्यताम तिक हिन्न बिसी थेसेन एनिगदेला गोनाला जब येसु चुप संसारी ठासी स्वर्गरी निजी परमेश्वर से याकरी उपहार पुय प्रतिज्ञा लसुजी जेदा परमेश्वर से पवित्र आत्मा बिसी सम्बन्धन लसुजी याङसे याङला मुक्तिला दुई दिचु उपहार याङजी प्रेरित 2:38 पत्रुसे थेनिगदेदा चुरङ बिसी जोहा पिन्सी दहेन्से एनिगदेसे रङ रङला पाप खासी परमेश्वर पट्टी दोग ओचे पाप माफ याङबुला लागि एनिगदेसे येशु ख्रिस्टला मिन्दी भक्ति

0: बेहोरला तहरी निजी विषम एनिगदे छिटोला तर परमेश्वरला आत्माला शक्ति ज्ञान थे पापी बानी बेहोरा नाश निजी विषम एनिगदी सोला तिग्द विषम परमेश्वरला वचन से उनबा ज्ञानी ब्रव मिगदे जे परमेश्वरला कोलागदी हिन्न याङला सन्तान हिन्बा थेन जे जसरी याङला जसरी रङला संसारिक आत आमा बुबा आमा आवासे रङ जाजा मुबा रङ निर्देशन देन बुद्धि पिनबरी सेमुला थेरङदासी नन रङदा रङला ज्ञान देन बुद्धि प्रकट लाबरी सेमु सेमुला तासी रङ से दुई से पिनबा पूर्ण रूपी ज्ञान आशिष कादे प्राप्त लाबरी हमस्युला प्रेरित दस अध्याय 38 खारङ लसी परमेश्वर से नासरतला येसु थोरी रङला आत्मा देन शक्ति पुखाजी जमहेन्ज थे जब गेदेन शैतान से दुखा पिनबा जम्मन मिगदिदा खन्बा लामन ब्रजी तिग्दा विषम थेदेन छ्याम परमेश्वर मुबा येसु ख्रिस्टला उपस्थितिला अभ्यासलामा मिला बेनन बन्द गेन उदाहरण मुबा परमेश्वर से रङला लुई पवित्र आत्मज्ञान निर्देशित लाबरी पिन्छुजी याङदेन पवित्र आत्माला बलिदान ताबसे याङ परमेश्वर से प्रदर्शन नशुबा हरङमन मिगदेला लागि फन्ना शोभा देन छुटकाराला गेगदे लाबरी हमला साँचो विश्वासला क्रिस्चियन दोबरी दम्सुगो अर्थात दिक्किन नोन सुख आवास ज्ञानबरी देन पछ्याबलाबरी मि सोचुगो आमेन रङिला जीवन रे परमेश्वरजी प्रशस्त मातृ आशिष पिन्छुगै
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ
0: कार्यक्रमलाई बारे राङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 धन्यवाद
1: हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी राङनी छङमदानु जय मसी नमस्कार
2: टाइम चेक इट्स 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।